0: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेंस वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
1: Ever wondered what it really takes to thrive as a student in New Zealand? Whether you are 12 or 90, chasing a PhD or self-learning on the go, I'm Buddhika, your guide through New Zealand student life. Each week, I'm joined by inspiring guests as we'll cover it all, from migrant grit and study tricks to cracking the job market and how AI is changing the game faster than you can say ChatGPT. Join me in New Zealand Student Life every Sunday afternoon at 5 on Fresh FM.